पंजाबी ओदा रंग आ गुलाबी उन्हें अख मटकाई मुंडे हो गए शराबी। जुत्ती पैर दी पंजाबी ओदा रंग आ गुलाबी उन्हें

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

0: listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल जमाने में, दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

घड़ी न दिखाओ, गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गए।

झटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गोते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, आई एम द पैरेस्ट मदर।
1: हार्ट बीट

है सदियां खुशबू का दर है, ये शहरे मोहब्बत मेरा हम सफर है, केसर के रंगों को ओढ़े है शब भर, है दिलचस्प बातें, है दिलकश ये मंजर।

झीलों को जोड़े है झेलम का पानी, सफर तू बता मुझको चलना किधर है, मुझको तलब खुद से मिलना किधर है, जो मांगी दुआ में मन्नत यही है, सच तो है तू।

0: के लिए खुदा भी टाल देगा, जब होगी बात बेवफाई की, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा।
1: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.

है चार दिन खाने को, वो नर कहते मातम में हंस के दिखाने को, अपनों वो जानू जानू मशाने को, गान में ले ले तू फीचर हो गानों को, लालची मेरी रोटी ले ले खाने को, चाह की प्राप्ति लालच को।

0: वो नफरत में तो लेना कोई
1: हिप हॉप बनी लाइफ कपड़े दिए खाना दिया फैंस के रूप में खजाना जीने के लिए जमाना दिया परायों ने प्यार अपनों ने ताना दिया मैं हिप हॉप नहीं कईयों ने दावा किया मैंने हर तरीके का गाना दिया नास के लेवल के साथ गाना किया टेल मी कितने रैपरों ने जो गाया जिया बता दो कितने रैपरों ने जो गाया जिया।

0: ओ भाई बीटी मत दे, लाइन दे। अंडा नॉनवेज नहीं होता और बियर दारू नहीं होती।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

नियाज हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम। कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।

तेरा चले तो ले ले पूरा दिन, हो तैयार तो घंटे न गिन। मैं हूँ यही एच सर्विस, टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट। हाथ मेरा थाम, लेट मी मेक यू स्माइल, आई लाइक योर स्वैग, यू लाइक माय स्टाइल, देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ। जब भी होती लो तो मेरा नंबर करे डाल, मैं हूँ तेरे साथ साथ तू है मेरे संग साथ। तेरे साथ टाइम की खबर न लगे, किसी भी चीज में कसर न लगे, मांगू दुआ यही नजर न लगे। बेबी ऐसे है मत कर हमें क्या मत, तू मुझको मिली है ए, ये है मेरी किस्मत।

0: cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं

तुम्हारी याद में आंसू बहाना दिल की दीवानगी है। तुम्हारे दूर जाने के फैसले की वजह से जिंदगी अब जिंदगी नहीं, सिर्फ आवारगी है।

कल तक जड़े केंद्र से बाई बाई जिन्ना यो तिलाती मैं या जिन्नी भी कमाई कला बदले या टाइम नहीं हो यार भी या बदले काले कमाने काले कर देते बगले देख देख देख देख, देख।

कितना प्यार है मुझे तुझसे, कैसे बताऊं तुझे। तेरी यादों से जो टीस उठती है दिल में, उसे कैसे दिखाऊं तुझे।

0: CJMR 1320.
1: अगली बार माँ पूछेगी तो कह देना मेरी किस्मत में प्यार शादी दोनों नहीं है।
2: तुमने सारी दुनिया को पढ़ लिया है, अब देखना है मुझे कितना पढ़ सकते हो।
1: पर हाथों की लकीरों में तारों को सजा हुआ पहली बार देखा।

दिया हमारी किस्मत ने ही, इतने बड़े भूकंप को जन्म दिया है जो प्यार जिंदगी दे सकता है, क्या वही प्यार जिंदगी ले भी सकता है।